राजा जाने का बोलो वसाल जवानी दीवानी का। ए चल बेटा चल बेटा बम बम बम बम चीक चिक चाम चीक चिक बम चीक चिक चाम चीक चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक पढ़ के बोल बेटा बम बम बम बम पढ़ के बोल बेटा बम बम बम बम पढ़ के बोल बेटा खिड़की खोल बेटा बम बम चिक बम चिक बम बम

एक भाई शंभू संग तंबू तंबू में झम झम ढोल बजे ढम ढम तंबू में झम झम ढोल बजे ढम ढम छोटी सी कबूतरी नाच रही चम चम चम चम चम चम चम चम चम चम चम घुंघरू पायल बांधे घूमटा उतारे चले मुगले आजम के आगे।

0: जलवे दिखा दे प्यारे लटके, यही से दिखेगा अलबत्ता दिल्ली बम्बई कलकत्ता। हरे रामा कृष्णा प्यार की कहानी, चाहे देखो तो चोर चाहे काला पानी। कल आज और कल 20 साल पहले, एक से एक नहले पे दहले, एक से एक नहले पे दहले।
1: आई कुम बैकुम काला तुरी जोधुर मास्टर छोशुर बारी रेल कॉम जोमा जोम पा बिजली आलू दम।

चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है sec.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की ये तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी IIT BHU से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं। मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है।
और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए, जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था, बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढ़ेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तु कला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना, उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढ़ेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढ़ेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढ़ेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढ़ेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढ़ेरा अवश्य जाएं और भारत की इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का यह एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों
उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है, कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया, यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहाँ फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था, तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहेजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही हैं। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर

संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है। एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माई भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे। 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने अचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए
नए अवसर लेकर आ रही है।

0: वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहां आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही हैं। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही हैं। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की ये पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित न रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती हैं। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई है। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा घर घर मुनगा ये अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खान पान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा, सिर्फ भारत में ही नहीं है, जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए। वे वैसे तो थाईलैंड के हैं, यहां भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिका नेत के रूप में की जाती है। और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहां आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहां हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से।
2: कार्यक्रमात आता ऐकूयात लता मंगेशकर आणि सुरेश वाडकर यांच्या आवाजात लक्ष्मी या चित्रपटामधलं गीत। जगदीश खेबुडकर यांची शब्दरचना, संगीत दिलं आहे राम कदम यांनी।

0: क्या बात है संगीता जी, ग्रेट ग्रेट.
1: थैंक
0: अच्छा
1: थैंक यू.
0: ये क्या था मतलब, ये आपका राग के बेस पे था?
1: राग के बेस में
0: मतलब, ये आप सिखाती है?
1: सिखा

0: क्लासिकल सॉन्ग था या बंदिश थी या क्या था?
1: नहीं, एक भजन थी। भजन एक
0: क्लासिकल
1: भाटिया राग के बेसिक में एक भजन है। तो पिताजी ने हमको कभी कभी भजन भी करो भगवान का कभी कभी, तो एक एक बंदिश जैसे सिखा देते तो राग बेसिक में।
0: अच्छा,
1: तो
0: संगीता जी मुझे एक बात बताइए, आप जैसे जो प्रोफेशनल सिंगर्स है,
1: अच्छा अच्छा
0: क्लासिकल सिंगर्स की बात करो, उनका रियाज कैसा होता है? आप लोग की सुबह कैसी होती है?
1: सुबह से थोड़ा सा, सुबह उठते थोड़ा सा अपना नित्य कर्म करके थोड़ा पानी पी के थोड़ा लाइट लाइट खाना बोलते, जस्ट थोड़ी सी, कभी लाइट हैवी नहीं, तो उसके बाद हम रियाज चालू करते आधा घंटा एक घंटा, सुर साधना करते तीन सप्ताह।
0: आपका बताइए कैसी शुरुआत होती है?
1: सुर साधना तो वही सा बहुत टाइम करना पड़ता है, आकर में करना पड़ता है।
0: वो करके बताइए थोड़ा
1: सा। सा भैरव राग में कर सकते हैं।

0: मतलब ऊपर का भी रियाज करना है, नीचे का भी।
1: इसको बोलते मंद्र सप्तक मध्य तार, तीनों पे करते।
0: एग्जाम्पल
1: सानी दबा मगरी सर, सारा सानी दबा मगरी सर, सागरी सा नी दबा मगरी सा,
0: ये तार सप्तक है।
1: हाँ मगरी सा नी दबा मगरी सा सानी सरे, वेराइट वेराइट टाइप कब कर सकते सुर साधना, मतलब सुर परफेक्ट लगने।
0: ये आपने तार सप्तक में किया,
1: तीन सप्तक गया, एक मंत्र पे गया।

0: रे सा, वो मंद्र सा से जो मध्य सा से मंद्र सा तक लेने के लिए कि वो जो रहता है,
1: मतलब हम जैसे समझे तो नॉर्मल से नीचे
0: नीचे मतलब अपना मेन जो सा अपना रे उससे जो सारे गा मा पा नीचे जो जाएगा सुर नीचे सा नी धा पा वो जो है वो उसको मंद्र सब तक बोलते okay. कोई कोई खरज साधना बोलते अच्छा। वो और सा से सा तक जो है पा सा तक है वो मध्य बोलते, फिर मेरा हाई पिच सा से ऊपर जो जाएगी
1: अभी मध्य का करके बताइए

0: ग्रेट।
1: फिर जो अति तार भी बोलते सा सा सा सा सा सा, ये भी जो उधर तक भी साधना एक होती है, बहुत डिफिकल्ट होते हैं वो।
0: और ऐसा कहते हैं कि अगर आपको तार सप्तक जो आप बोल रहे हैं ऊपर हाँ, जाना है तो वो उसके लिए हेड वॉइस लगता है कुछ, सर का
1: वो सर का लगते पर बहुत एकदम ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि तो माथा भी दुखता है कभी कभी, जो खराब लग जाता है ना कभी कभी थोड़ी सी, वो माथा दुखना लगता है, वो भी ध्यान देना पड़ता है, वो सॉफ्टली करना पड़ता है, नहीं तो उसको भी ज्ञान लेना पड़ता है गुरु से, नहीं तो वो तार सप्तक साधना पे माथा दुखता है, कभी गला पड़ जाती है, उसको बहुत सारी तकलीफ होती है।
0: आप कितने देर करती है अगर आपका प्रोग्राम हो तो, आपको कितना देर करना पड़ता है?
1: कम से कम, ऐसे तो संसार भी है, घर दार भी है,
0: इसलिए
1: तो पहले साधना बहुत हो गई, जब
0: पहले कब करती थी, कितने साल
1: पहले? तो कम से कम 5-6 घंटा हो जाती
0: थी। क्या बात कर रही हो, डेली
1: डेली कॉलेज वगैरह जो भी है 2 घंटा हो गया, बीच में टाइम खाना पीना दोपहर टाइम में भी जो रहा वो सब कर ले, फिर रात को पिताजी के साथ तबला संगत में बैठना पड़ता है 2-3 घंटा।
0: आपकी जिंदगी में संगीत कैसे आया?
1: संगीत तो संस्कार पे, पिताजी सीखे थे कलकत्ता से।
0: कहाँ से हो?
1: मैं ओडिशा से हूँ।
0: अच्छा,
1: ओडिशा भद्रक बालेश्वर एक एरिया उधर से हूँ, और पिताजी कलकत्ता से सीखे थे, टीएल राणा जी, उनके से वो संस्कार पे सीखे थे, तो फिर उनसे हम लोग ने शिक्षा ग्रहण की है।
0: आपने क्या पढ़ा है?
1: मैंने सिंपल ग्रेजुएशन किया है।
0: उसके बाद संगीत में क्या?
1: संगीत में मैंने विशारद के बाद एमए किया है, एमए मतलब मास्टर ऑफ म्यूजिक।
0: हाँ।
1: और उसके बाद डॉक्टरेट में कोशिश कर रही थी, थोड़ा शादी हो गई, थोड़ा
0: अच्छा
1: थोड़ा हो रह गया, अभी तो कोशिश चालू है वो भी कंप्लीट करने के लिए।
0: क्या बात है,
1: डॉक्टरेट करने के, डॉक्टरेट करने
0: हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, 100% हो जाएगा,
1: ईश्वर की इच्छा होगा वो भी हो जाएगा।
0: तो अभी रियाज चालू है क्या? अभी सिर्फ सिखाने में ही रियाज हो जाता है?
1: रियाज बगैर होगा नहीं, अपने को भी रियाज लगता है।
0: क्या होता है रियाज डेली करने से और न करने से?
1: न करने से ऐसा जिंदगी में संगीत ऐसा आ गया जो उसके बिना सब कुछ अधूरा हो गया ऐसा लगता है। सब तो कुछ है, संसार है, बच्चे हैं, सब कुछ है, खाना पीना मस्ती सब है, पर उसके बिना लगता है सब कुछ खाली खाली लगता है, कुछ रह गया ऐसा लगता है। रियाज करो तो लगता है तो सब कुछ हो गया ऐसा लगता है।
0: इंसान के जिंदगी में संगीत आने से
1: हाँ,
0: इंसान में क्या परिवर्तन होता है?
1: परिवर्तन होता है, एकदम मन शांत होता है बहुत, और दुनिया में जो झगड़ा और शांति वो उनके मन में आता
0: वो
1: नहीं है,
0: ध्यान
1: से निकल जाता है,
0: उसके परे निकल जाता
1: हाँ,
0: है।
1: वो उनके अंदर संगीत ही भरा रहता है, रास्ते पे चलो, खाओ पियो, रोसे करो, सब अपने मराठ में सोई पाक करो, उसके अंदर भी हम कुछ भी गाना गुनगुनाते रहते है, चलो बोलो सब तो
0: आपको है। मराठी गाना आता है कोई?
1: मराठी गाना तो
0: भजन
1: भजन
0: कुछ सुनाइए, दो लाइन
1: सुंदर।

0: गुरु जी सिखाए थे, तो मैं भी हिसाब से चल रही हूँ, मेरा मानना यही है।
1: ठीक है, अब आपको चारों से एक रिक्वेस्ट है कि जाते जाते आपका एक एक गाना सुनाए। आप एक क्लासिकल गाना सुना दीजिए, या वो आप बोल रहे थे बंदिश, ये बंदिश क्या होती है?
0: बंदिश होता है कोई राग के, राग होता है ना उसके ऊपर एक बंदिश, वो नोटेशन में एक बंदिश होता है, छोटे छोटे स्थाई अंतरा करके एक बंदिश, छोटी बंदिश होता है, लिरिक्स छोटी सी होता है ब्रज भाषा में, संस्कृत में छोटा बंदिश स्थाई अंतर, दो दो चार चार लाइन, तो हिसाब से वो बंदिश बनता है।
1: बंदिश सुनाइए।

0: वाह
1: बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब आपका गाना सुनने के बाद समझता है कि गाना सीखना जरूरी है और रियाज की
0: जरूरी है,
1: जरूरी कितनी ज्यादा है। आणि आता जाता जाता सुमिता जी आणि संजय जी यांचं एक ड्युएट ऐकूया जे खूप गाजतंय नाशिक मध्ये।

तो क्यों गुना समझते हैं लोग, कोई किसी की खातिर तरसे अगर तो हंसते।

की चाह है जहां बिजलियां गिराने की, तो हमारी भी जिद है वही आशिया बनाने की। रेडियो विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, आपकी जिंदगी आपकी आवाज। और आप सुन रहे हैं सुकून म्यूजिकल स्टूडियो प्रस्तुत संगीत का असर, सुकून का सफर। आइए आज का पहला नगमा हम लोग सुनते हैं, अजनबी कौन हो तुम, गुरमीत दरिया नानी की आवाज में स्वीकार किया तुमने। और लता मंगेशकर जी ने यह गाया हुआ सॉन्ग है, काफी रोमांटिक सॉन्ग है। आइए आज की पहली पेशकश रोमांटिक सॉन्ग से करते हैं।

आप इसी तरह बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आइए हम अगली सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। अगला सॉन्ग हम लेकर आ रहे हैं, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। किशोर कुमार जी ने गाया हुआ ये सॉन्ग है। 1975 में ये फिल्म आई थी, जमीर फिल्म का ये सॉन्ग। लेकर आ रहे हैं विजय माली जी।

तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। जिंदगी की रफ्तार भले ही स्लो हो या तेज, पर जिंदगी चलती रहनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो संगीत के साथ जुड़ जाते हैं, चाहे वो श्रोता हो या सिंगर, तो वो अपने आप में उन्हें मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो संगीत के साथ जुड़ जाता है वो ऑटोमेटिक मेडिटेशन कर लेता है। आप सभी को बता दूं कि 3 अक्टूबर को सुकुन म्यूजिकल स्टूडियो लेकर आ रहा है गुरु दक्षिणा हॉल में धुरंधर 2। गीतों का बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है अपने नासिक में, और नासिक वासियों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को उपस्थित देना ना भूले। 3 अक्टूबर शाम को 6 बजे गुरु दक्षिणा हॉल कॉलेज रोड पर। आइए अगले सॉन्ग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगली पेशकश लेकर आ रहे हैं प्रवीण जी पाटिल, जीवन के सफर में राही। मुनीम जी फिल्म का ये सॉन्ग 1955 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, और किशोर कुमार जी की आवाज, एस जी बर्मन जी का संगीत और देवानंद साहब और नलिनी जयवंत के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग। आइए हम लोग सुनते हैं प्रवीण जी पाटिल की आवाज में, जीवन के सफर में राही।

ही बेहतरीन पेशकश प्रवीण जी पाटिल जी ने हम सभी के सामने दी है। श्रोताओं, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हमें मिलते हैं उस कमेंट से हमारा और सिंगरों का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ता है और आपका प्यार, आपका सराहना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपके इस प्यार के लिए, आपकी सराहना के लिए मैं शुक्र म्यूजिकल स्टूडियो की ओर से और रेडियो विश्वास की ओर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। रेडियो विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, आपकी जिंदगी आपकी आवाज, सुकुन म्यूजिकल स्टूडियो प्रस्तुत संगीत का असर, सुकुन का सफर, ऐसे ही नगमे को आप सुनते रहिए। और आपकी भी अगर कोई फरमाइश है तो आप

0: का सफर।
1: आइए हम लोग अगली पेशकश सुनते हैं। अगला गीत लेकर आए हैं प्रवीण जी पाटिल और उनका साथ दे रही है गुरमीत दरिया रानी। फिल्म का नाम है काला पानी और गीत है अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। 1958 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और जैसे हम देखते हैं कि मोहम्मद रफ़ी जी और आशा भोसले, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतर होता है, इनका कोऑर्डिनेशन बहुत ही बेहतरीन होता है। कुछ ऐसा ही कोऑर्डिनेशन आपको इस गीत में देखने के लिए मिलेगा प्रवीण जी पाटिल और गुरमीत दरिया रानी जी का। तो आइए सुनते हैं फिल्म काला पानी और गीत के बोल है अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना।

हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है? हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है? क्योंकि जुदाई ना होती तो मुलाकातें कहाँ से होती। और इसीलिए दोस्तों मैं शुक्रवार से लेकर अगले शुक्रवार तक आपसे जुदाई ले लेता हूँ ताकि फिर मुलाकात हो सके। फिर मिलते हैं अगले शुक्रवार को इसी वक्त दोपहर 3 बजे। तब तक आप बड़े सुकून से गाते रहिए, सुकून से सुनते रहिए और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना, यही हमारा उद्देश्य। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो मैडम। हाँ
0: जी
1: नमस्ते
0: जी
1: नमस्ते। ये देवनाथ
0: हाँ
1: चाचा चा
0: बताइए।
1: आवाज तड़े ले आला गणपति माजा नाचे से आला।
0: अरे वाह, अच्छा
1: हाँ
0: गाना
1: मैडम।
0: बताया आपने। आप मराठी गाने सुनती है क्या?
1: हाँ सुनती मराठी लेकिन इतना है ना अपन मराठी लेकिन पहले से मुझे ना हिंदी बोलने की आदत है मैडम।
0: ठीक
1: हाँ ऐसा है।
0: है,
1: थैंक
0: कोई बात
1: यू
0: नहीं। ठीक
1: मैडम नमस्ते।
0: है जी जी नमस्ते नमस्ते।
1: हाँ।
2: गणपति बाप्पा।

0: गोलमाल है।
1: बम चिक चिक बम चिक बम बम बम चिक चिक बम चिक बम बम बम चिक चिक बम चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: हेलो
1: हेलो मैडम। हाँ
0: जी
1: नमस्ते। नमस्ते। ये देव ना
0: हाँ
1: काचा
0: बताइए।
1: आवाज तड़े आला गणपति माजा नाचे से आला।
0: अरे वाह, अच्छा
1: हाँ
0: गाना
1: मैडम।
0: बताया आपने। आप मराठी गाने सुनती है क्या?
1: हाँ सुनती मराठी लेकिन इतना है ना अपन मराठी, लेकिन पहले से मुझे ना हिंदी बोलने की आदत है मैडम।
0: ठीक
1: हाँ ऐसा है।
0: है,
1: थैंक
0: कोई बात
1: यू
0: नहीं।
1: मैडम।
0: ठीक है जी जी नमस्ते नमस्ते।
1: हाँ।
2: गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति
3: आला
2: आला आला आला आला आला।

0: हेलो
1: हेलो हेलो।
0: नमस्कार,
1: हाँ
0: बोला। तो
1: हाँ मैं राजू डिंगोरे बोलते हैं, जोना शेडकुदोन शिवाजी चौक।
0: बोला।
1: तुम्हारा तो फरमाइश दे ची का पिक्चर था मेरे हम सफर।
0: हाँ
1: इस राह में इस मोड़ पर
0: बर